नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है अरजीत ज्वाल बोई। आज बुधवार का दिन है एंड ईद उल जुहा, जो कि एक बहुत ही बड़ा महोत्सव है, स्पेशली हमारे मुसलमान भाई और बहनों के लिए। एंड यस, मैं आप सभी को ईद उल जुहा का ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। एंड खुदा करे कि आप आज आपका ये जो बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत ही धूमधाम और अच्छी तरह से बीते, और ये जो और त्योहार है आपके जिंदगी में ढेर सारी ढेर सारी अच्छे वक्त और खुशियां आपके लिए लाए। तो चलिए, इस खंड में हम सुनने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत, जो कि गज गामिनी लव आजकल और परवाना फिल्मों के गीतों से हैं। एंड आप हमारे इस खंड को अपने प्यार भरे एसएमएस से भर दीजिएगा। दोस्तों, आपके प्यार भरे एसएमएस का हमें इंतजार है। वी कुंते ते मिंग मोय ते ते अमे गा ते सी जे ते ओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा अनि सिंहाल विक मई इनार जे जवाल बई करन कीरा सुवान सुवान सेगमेंट र नो छे तुखानी कन हन सोम गाल बकनी मो वइनी ते हे सोल अनिया ईदुल जुहा ते निया ईदुल जुहा मंग ते खानी नन लो निरे वे ठक मे दोन गे एतिन गे वइन हुन हि मनन तुम दान ते खशियात खा कन साक एम एम खोप मे स्टूडियो करन लुलाई खान करिल रुआ खान नम देव वंग वंग मो एतिन गे वइन हुन हि मनन ओ तिखा करिल रुआ खान लो ओमा हे वहीं सु मुसलमान ते अभी तक की निदुल सुहा हूं पुई हाँ तिमे अंग अनि आ कैनिन क्रिश्चियन तेन क्रिसमस तक ने अंग खानि चुवान चुवानिन ए हुन अन मंग रो पुईले तुरा हन गाय लतरो हुन छत्ता गन मंग तुरा ते पोखानिन हन बे से सकेला ठो में। तो चलिए दोस्तों, इस खंड की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ हम करते हैं। लव आजकल फिल्म से हम सुनेंगे आज दिन चढ़िया।

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था लव आजकल फिल्म से आज दिन चढ़िया। ओले जेरल्जा महियानिन। हेलो आरजे वी एल लवजोक ओ गई माखा ओ जेरल्जा मरोन गल्ले वी आउ जेल्सु नमस्ते सुप्रभात ओ सॉरी आरजे वी एल मोहतिले छीन तिपल जाय थ्याम थ्याम लवजोक आरजे ज्वाल बोई निजोगे रंतिया का जाय थ्याम ले थ्याम लव ही उई हा रन कॉन्फी थे बोसे जेरल्जा महिजुमो दो थी दिहान इन कॉन्फी दे उहियान रन पॉर्चे ना कजाई thiam lo hi chu ti phal ka ring lo mon when duty no am next song it dance is sentia de karani rjvl ta ni ro ko du sak dan tur si shat karon tia o rjvl hi rjvl nen hian in entina modi in mu sakhi tir hi min tu mo jail zamaril ru hi an inge a thalo re wanya ama te hian in hei i dinge gan tiang setena te chi hi om ve de ni chu mo jene sama lo kisu gin karing ani bi kung te pona dik ati karing tu na soi khawam nakina aron ai enge thumoi tok mangin aron aron rem dik le thap meang bi kung ten तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग, ये होगा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। प्यार तो होता है प्यार।

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था मोहित चौहान के सुरीली रोमांटिक आवाज में ये दूरिया। और कि ngày te khol shin hian in imo jelal zam kha vie li khan bol mai mai ni kha jelal zam ai zam ming moi te a du zo ka sin vie li khan ron te in ma ni shi chiang te chin cm o eng mai hi i thuruk tak tak po yom thelo ni tro kan lo in shi bu yu kyo zel me ya ban cha chin tak e ma to pa hi chan in fm zo o ya hen kan ai pon ne tang e nge zel me chin bo kan no a mi ka ti mo thuru gom chan ran puang sel te o ka lo ngai thar reng ania ga tu ma ka shil lawang ka beng ka do kar ania he आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके एसएमएस का इंतजार करते करते हम नेक्स्ट बढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। ये होगा ओके जसपिंदर नरू ना फरीद सबरी और सरिका की आवाज में जो पल्लू गिरा दिया।

아차도 아 주완수완 어 게마니 람마정 수완인 틸카글 디카글 필빅도니 아 주완수완인 밀롱아이 사실 도는 왕포인 럼투근 한서일로 그레랭땡 어 넥스트 जो मैं आपको सुनाने जा रही हूं इस वक्त मुझे जितने भी सुन रहे हैं एसएमएस मिरन थोंतु जोंग जोंग जिंग कार मैसेज थुम तक में मिरन आ थोंतु जोंग जोंग तितान खान इन कन हन थन सकेंगे ओम लव आजकल फिल्म से हम सुनेंगे थोड़ा प्यार.

아닌 이 앵이끄런 룻만 라우디디데이데이 디베르카수 이 이촨나 메메야가가요 주방인 밀롱의 탁절절 가간 베이세이 떡 मैंने ले इस खंड के लिए सबसे आखिरी गीत सुनने का वक्त आ गया है और ये जो गाना है मैं आप सबके लिए और लहे सेगमेंट ताना करना नू बेरोंगे थाक ना होने लाओ थेंग लेता आ मैं रोचू इन आरजे इस वाल बोई ही ग्रोन के लिए फटोना चुचू dar som le mi som li a gron gi le do na ni chmi chung chuan in kan loin a por ve peng pong anga o nang ni sin por peng pong to lom sia te ro chuan in o he mi zo hian in la moi tak tak sa plan en rj du saki english segment a ron lu do na ni o a ma hi na ki na pe san ron na life to na a life hun song song te po ka ron le sei do ni chuwang in in lo ngai thak in lo ngai san kar kha nga ye ni o and o he ta hian in ke va la hian in channel dang chu a ring thalut tuk an ron tile ke va la po ya over a ma hi mo mi over ania i til hi nilo pui pui oi om lo teu teu hi sui hi sha ta mo ka channel danga thatla ya rin thatla ya ka o a rin that big lo na chan tur kha ka shelo reng reng ani chu chan ke ngai te hian in an mel se lom lu tu ka sound ni ngam lo ani ani lom ka zwan boy ka segment ka kam lo chin tile top mele tro ole a nuam cho don dia wa mara chu huni min dei ta si la fa chu wan chuanin इस प्यारे से गीत के साथ आप सभी से अलविदा लूंगी और मैं फिर से वापस लौटूंगी 10:40 में निचे नगर से खानिन दार सोमले मिनिट सोमली या खानिन करो के ले दो ना इकानिन तोनले ठोक बेसे चु बि छुंग छुआनिन एंगे कस एंगे एंगे एंगे इ इन रन टाइप टूर ते खलोइन गे तो लो कुल ओ इ ने इ के वाला ते आंगा इ फोट सो प्लु टू ग्रीस लु तुका रोंति थुत thut jeral za mate angte mo khatyang lo de khanin thuril thu inge i thu thu chade ode thurin tlak de ode ron sei thei tur khan lo in ring lock de u तो चलिए इसी खंड के साथ मैं आप सब से अलविदा लेती हूँ. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम जॉय 100.7 आपके साथ आरजे ज़ोल बोई और मैं फिर से वापस लौटूंगी 10:40 में.

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे ज़वाबी। वेल, आज का हमारा ये दूसरा खंड यही शुरू होता है और ये जो खंड है 10:40 से 11:20 तक चलने वाला है। तो दोस्तों, आप अपने प्यार भरे एसएमएस हमें भेजना फिर से शुरू कर दीजिएगा। जेरल्जा मतमिंग मोइते सीजे ते ओ विकुंग ते के वाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखा रोनिन लार ले chuai dawna veizawng te hian nga thu leh hla te hian nga an ni ho hi chumaw kum lama te pawh kan u kan nu leh kan pa rual deuh te khan ni a chuan chuanin aw an ron tui hni leh nasak mei dawn a ni maw chuan chuan lo in ring tlang ila chuanin he segment ah hianin lamawi tak tak la lui mawi si ril si thing thei lo chuai thei lo te ka kan ngai thla chho dawn ani o awa han nuam le dawn em chuan chuan in ril rem zong tak then khate chu in hun lai a in lo kur pui ve ngoi ngoi thin te khani dawn a chuan chuan mi lo ngai thla zel tur khan in kan han in so many to chaliye dosto is khand mein hum sunenge purane zamane thore purane zamane ke bade bade pyare gaane jo ki aaj tak ye gaane bahut hi बहुत ही मन पसंद और बहुत ही पसंदीदा गीत है। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आरजे ज़वाबी का जो सेगमेंट है वो कभी बोरिंग नहीं होता। तो चलिए, इस वक्त जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी के लिए ये प्यारा सा सॉन्ग गजब का है दिन।

दोस्तों, आप हमारे साथ लगे रहिए और मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगी कि आप अपने मनपसंद के गीत जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इन दू जोंग पोखा लाइन रन थंग थे नी ओ रंजाम सु आ इंजाम दो नव दिखत सुकन सियांग सा फोट मेमो। अले नेक्स्ट हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो कि है आपके मन को छू देने वाली गाना। ये होगा एक बहुत ही खास फिल्म से, कुछ ना कहो 1942 लव स्टोरी में खानिया मनीषा कोई राला ले अनिल कपूर ते चन्ना खानिया खा फिल्म खा मोन मनी त्रो अलाव खा आ नल मे पक्सिया चबांग चानिन हे लाही तो ना मिलो गाय तो जोंग सुख तान खानिन कन ला नंग चानिन ला ते खा थान चुर चुर थे कंती खा ओ तो चले सुनते हैं कुछ ना कहो।

तो चलिए नेक्स्ट टाइम सुनने ओके आपके मैसेज की ओर बढ़ते हैं। सी जतियानी दिल दीवाना बिन सचना के तीखा गाय थाई लारन ते थंगे हरन ते गाय थदोन सियांग सी जता लोहा फन फन रो मैसेज लगी कन चाले जवाई जवाई गा के वाला यानी आरजे जवाल बो इतिमा मालो मोई पियान कुम कशलो Sito jenga ka chuti nang maai sa kala na upang so kang 1974 sa yang kaning moy tele ke ngay teten ki kortlang arnia nan lau lampuy shep to mi ming moy tele ke ngay tete adikem ke bala hianin aron ne so khop may zewa Chuanin, LB rin tli hiyani yun. RJ, tukin hinga tingi. Azoy riyo. Bay midangan ni VM le. Tiyan midang tipo. Ni fik o LB rin tli vayin suni e. Kan soy le soy no studio lamay hiyani yun. Kan call tipo hi siyan lo chang hi om vetri na. Suwan suan hey. Kan min lo ngay tatu te. O in ilom lo te kan lawa. Suwan suan in studio chunga tayin kan aw ton. Ton may ni kan o te kayin siya pag lawang te kan lawa mo. Suwan suan min lo ngay tatzel don niya. O. ओके चलिए सुनते हैं दिल दीवाना बिन सजना के ये जो है इसी जतन रन थंगा और सी जतन सी एल एम एम इन ले एस एम एस रन थन तूते ले मिन लोग इन लमा मिन लोग आई थिंग थिंग तूते तान खान हे लाही कन प्ले दो ने ने स्वान इन कन शे तंग इन हे लाही मैंने प्यार किया समन खान ने भाग्य श्री चंद खानिया अन पत्नी वे वे यानी अन फिल्म सपेर ने अन हन हिट एम एम ले हाल है फिल्म टंग यहां समन खान ते ही कन गा कन दुजवाल कन लो छ छ कन लो छ thara chuwan cha anni pani tam phei chan he film hi lu em em ni an career an career enge siam na build up na ma saber film khani e chuwan chuanin he lang duve tu zang zok te tam po khan kan lan tel ngalani e ah

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जोयो 100.7 में आपका स्वागत है। आपके साथ है आरजे ज्वाल बोई कंधुने लो इंटरनेट ता आ न, है ता न, कंश्रां हुआई कंतिदोन ने जिलजा मतवी कुंग ते ते के ngai te yaron la le chur chur do na meng moi te si zet te kanin ha khom nga chuanin kanin ha khom chung hianin hlamoi tak tak an ngai thlo na big tak in 90 sami la ro enge la hit tak tak te kha kan ngai thlo na ni o to chere sunte hi gumal sanu aur alka yagni ki awaz mein aur film hai असुन पही का सही दोन नौ इन सिंघाल दोन ती कश्या मेरा दिल भी कितना पागल है।

kan ngai thang o sangi tu ru tha to nge umlu tuk chuanin ki vala hianin rj zor boy ki kortlang ar hun lai khati hian kan kan chang don te ang guitar tung rut don lai kha ni o me o pati soi da na chuan guitar de khatro a rik dan kha dang che na tung rut kha di thina kha hun lai khan a she phamol mal kha cha ni na ran lan a ran lan na le biao do na ni a chan good boy hianin tuk thwa ni ma in in kan thleng le mana lom zal boy mai an thar le adang te ron sim ve ro am seria o min ti lim ve khop me eng le thama pa pek mi alawanya ilna play moi box sir an te good boy kalom lu tuk in thlai thar khamo khai kha in huan in nei nuam box ya kalau kalau feel ve veng veng me hathala ke na tang hian nuam kati top anime तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम सुनेंगे जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है सांग की ओर से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था तू रूठा तो मैं रो दूंगी थी खानिया चुवान स्वानीन तू रूठा तो मैं रो दूंगी कंतियांग ओ हे लाही अमोय अमोय ने ओ ए कन tripa em she phalo ge em ka shalawa are ve to ang renga he film hemo amaro tsmoi em em meini तो चलिए सुनते हैं तो रूठा तो मैं रो दूंगी

वाकई इतनी जबरदस्त एंट्री है, एंट्री मारी है. एंड यस ऑफ कोर्स, जब ज्वाल बॉय और जे ज्वाल बॉय की एंट्री बजती है तो सबके दिलों में घंटी बजने लगती है. तो चलिए आपके मैसेज की ओर बढ़ते हैं. जे रजा महियानी नार जे ज्वाल बॉय अरम सुआन राता लंबी अला कंगाई था इला मेर छत मना रन तिवेला जे रजा मत टेक्निक ही सुकमन वे निमो एंगे वो रिक्वेस्ट ने दानी सामी ही अनरन फक नुआ एंगा स्वामी सोई सले सर सर रंगा तियां खान या माही मो सुवान स्वानीन एंगले खोले पुआन खमोई तेकिन ट्री जेल तो रंगा इला चन गुड बॉय हियानीन आरजे जोल बगे वाले सी फति दुदा वी ए दितांगा मिदांगा सेन लेरिंग मानि अपार जे वी एलिन जरकन मिया पे आ टोंगानी शे तसी लवा बॉय थाक वेदेत कबेले थे चोंग लवा आ नियत्रो इचोंग इनशा थियाम लो मियाव हिसान हर सबे छीना आ माय रो छु तियां हिमो एंगे हन इचान तांते त्या हनि ब्याक वे तांते हन ट्रावेल तुका चोंग हनि जिरवे नान चोंग कन कन एंगे कत कन ट्राय कन तुमा कन तिना ना ना हिसा तो पाइन लो तिना एंग एंग मनी हि लोम वेले के वसे ला माय रो छु नंबर कचे थु थु नंगवा नंबर निया चा वी कुंग ते हन आरजे जोल बोइ छमलम जोंग छमलम जोंग कल कनवाम नो लु तुका करन लंग थे लवनी खा कमिंग इरन लम मोल मोल पोका शया द छलो सुख सुख सिरन ते वी कुंग ते सुइ लु तोक छिन ओ ई कबुला सोंग ला कपियाई सेन वेक थे तोंग करिन इलो दम लो हि पोई कति ओ आ माय रो छु kandam lawa kandam le chin chuan chuan nang po inom sam lawa idam lawa mai ro chu pathian sara idam le ang tikha kan han soi du ni a tikha mi lo ngai thala chanin i ming kan han lam ri eng i ming han lam ri ngal i te hi anwa ma mo mi lo shi tiam sham sham chin don ne bidang te khan thi ke na khan lo en lo la ऑलराइट चलिए नेक्स्ट नंबर ते हैं लाई हां जी रजाम खान इन ला मोई तक मै कदुवे एम एम के पोइन नल कति एम एम मे रन थांगा चुवान स्वानिन राता लंबिया गन गाइ थदोन ने मो हे फिल्म हे मु नोम सिया इन लो एन टू एम कशेलावा शेर शाह फिल्म यमी खानिया इ सिद्धार्थ मल्होत्रा ले kiara advani te channa ne chu anmani patni pe hi chu hei hemi film hi enge real ania true story nia i atak tak khania mo kargil in be in do na in be na india ne na khatyang im be na in chho lai hun lai vela love story lo om khania chanin heta achang tu nui na character a play atak tak a mi cha pe chu tu na po hi anala dama school te ho nga tikan na to to da pe so pension to me te u patwang mo kan kan chan hemi flip up mo na me me ya chan in I engi a love story a hian in a love story zo thu shan lo ni ta se he hun la ya I sipai te an din mun mo an lo I kan india ram sipai te an lo hwai sin sia a ra rama an oma ram ri zo na an in an duty ringa ke ni hela ya thlamang takin kan du du na kan leng koi kan sin koi tru khan zong song kai lai thlamang taka I kan lo om theina turin an ni nau thong thlaba reng reng in ring rengin an oma chuwan chanin hemi film hi a ropui a ril enge zirtirna ape thatak zet katia chuanin at share sha flima atang tu te siddharth le kiara te po hemi flima tanga in tong chau khan ni nge nge ya chanin tu na te pe chanin a nu pa ni to a for now du om tak tak ten nei chau to ni chuwan chanin hela hi ngai ngai lo du tu ve zong song te le ha flim lo en to mu nom lo ti ya a lo du ve tu zong zong te dan khan kan thlan sak ve nge nge teng o chanin hei dar khat le min som ni thleng kan hun khan ni ya a it's got segment is so less so no can come low chin copa in message tia ring ring yan in no mi ka tia mo a mai ro chu ni e na ki na class segment hi kron kir le do na chu chu dar ni le minute nga dar ni le minute nga kan kron kir le do na ni ta swan in kan relate song song do na ni o in la du song te po kha lo i thang le lo kula dar ni le minute nga chuan kan in tong le cheu don ani chuan durgesh naganpur se unhone thank you kaha hai dost aapka bahut shukriya aapka bhi hamare sath lage rahiyega aur main 2:05 mein durgesh ji fir se wapas aane wali hu aap hamare sath fir se lage rahiye and ke ngai te khiane azwa boy pal pal ke sak itan klau thang in lo sampai

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे ज्वाल भाई। आज का हमारा ये सबसे आखिरी खंड ही शुरू होता है और ये जो खंड है ठीक 2:30 बजे तक चलने वाला है। आरजे ज्वाल भाई की एंट्री होते ही सबका दिल धड़कने लगता है, सबके होश उड़ने लगते हैं। एंड यस, मुझे पूरा यकीन है कि आपके प्यार भरे एसएमएस भी यहाँ पर, आपके एसएमएस का बरसात होने वाला है फिर से। इस खंड में दोस्तों हम सुने जा रहे हैं 2026 के सुपरहिट्स गाने जो कि बहुत ही लेटेस्ट होने वाले हैं इस सेगमेंट में। और है सेगमेंट आई यानी अपडेट नो लेटेस्ट थर्ड बेर बेर टेकन गाइस लवे थुंग दोन ताने। ऑलराइट, इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त और प्यारे गीत के साथ जो कि है हमारे धुरंधर फिल्म से, जिसमें रणवीर सिंह ने बड़े जबरदस्त किरदार निभाया था। जय साजना, चलिए सुनते हैं धुरंधर फिल्म से।

Well, dosto, चलिए मैसेज आया है यहाँ कि देखिए आनीन ठीक है रुंती ओ प्यार के पल खलो लो लो शुरू दे रुंती नहीं हो तो ला सो पिते रुंती आ तेरे में प्यार के पल खगन शुरू दो ना नहीं अपन मोंगंग अन्यांग मैसेज टाइपिंग ही मोंग इते ही दिखाम रंग चुर चुर रो सी से ते वी कुंग ते ते कुंग ए गुड बॉय जाम ते के वाल मिंग मोई ते ते आ एक्सेट्रा एक्सेट्रा ते हो का रंग लंग स्वाई स्वाई रो तो चलिए प्यार के पल के साथ इसकी शुरुआत करते हैं है लमोई जित ही इन जवाई तान बीक तकिन थंग तुपा के गई ते तान ओ

0: Hei hi Akashvani Aizawl FM zo oi za point pasari atanga pon chwa ani a pawng thu pawng tu hilal du sake kani a engineer duty hilal rat zwala ani vo in ta na kan hun tho khatna chu lo zo le ta a ngai thla tu zong zong temin lo ngai thla ka wangin lom thu kan shil chewa kan hun tho ni na hi darli le achan veya atan le ani don ani ngai thla tu zong zong te ni le nuam vek ule
1: दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब से कुछ देर में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जेमिनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। अमरीका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
2: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu today urged the police force to become more citizen-centric and sensitive while dealing with vulnerable sections, especially women, the poor and children. President Murmu was speaking after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim Police during Alankaran Parade held in Gangtok this morning. She appreciated the role of the Sikkim Police in maintaining law and order and in disaster management. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today assured resolution of all grievances of students regarding discrepancies and technical glitches in CBSE Class 12 examination evaluation process and its newly introduced on-screen marking OSM system. Speaking to media after holding a meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said the OSM system is a progressive instrument aimed at ensuring greater transparency. The minister said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability is maintained at all levels.
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले.
6: Children should receive transparent information about their marks. Through scan copies, the answer sheets should reach them transparently. This is a provision under the OSM system. For the first time in the country, CBSE has implemented this system. Some discrepancies have come to notice in it. I take responsibility for this and it will be corrected properly. We will make sure that no genuine query raised by any student remains unanswered.
5: The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul-Azha. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has announced his resignation from the post. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed about Mr. Siddaramaiah's decision after attending the breakfast meeting hosted by Mr. Siddaramaiah for his cabinet colleagues at the Chief Minister's residence today. Mr. Patil said the move came following directions from the Congress High Command. He also announced that Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar will take over as the new Chief Minister. India and China have reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with the progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held in Beijing yesterday. The Ministry of External Affairs said the two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. The festival of sacrifice, Eid ul-Azha or Bakr Eid, is being celebrated with religious

आकाशवाणी आइजोल है और आप सब सुन रहे हैं FM सौ दशमलव सात मेगाहर्ट्ज पर। तो प्यार श्रोता, मैं हूँ आपकी आरजे नुबई। और जी हाँ, फिर से आज के शाम आप लोगों के साथ यहाँ बिताने के लिए आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा साथ पसंद आएंगे। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:32 हुए हैं और ये खंड रहेंगे 6 बजे तक। तब तक मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। तो हम शुरुआत करेंगे धड़कन फिल्म के गीत से, और गीत की बोल है दिल ने ये कहा है दिल से, आप सभी लोगों के लिए।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था दिल ने ये कहा है दिल से, धड़कन फिल्म के गीत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएंगे। और मुझे यहाँ सी जेड की ओर से संदेश मिला है, वो लिखते हैं आर्जे चिबई नुबईते हुन मन नाम फतले चो ऐ दो कान लम कनपन वेत कपन वेत मई अरुणिया। आपको भी मेरी ओर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। चिबई चिबई छमी मी मम तिचानी चो ऐ तुई बोकले चो ऐ खम फेले हम लोगाई खले दो न्या। तो आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा अगला गीत होगा, मैं आप लोगों को आज बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाने जा रही हूँ। अब हम सुनेंगे राहत फतेह अली खान और ऋचा शर्मा के आवाज में जग सुना सुना ओम शांति ओम फिल्म का गीत।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था ओम शांति ओम फिल्म का गीत, और गीत की बोल है जग सुना सुना। अब हम नजर डालेंगे आपके संदेशों की ओर, और उसके बाद हम फिर सुनेंगे हमारा अगला गीत। मुझे यहाँ मिंग मोइते की ओर से मिला है, वो लिखता है नमस्ते नुबई अरुंती अदिति नुअमले अरुंती अनि आपका आपको भी मेरी ओर से हुनमंदवाम जानिन, आपको भी मेरी ओर से मेरे प्यार भरा नमस्कार वी कुंते या नार्जे बोइनु इदम टाइम तुला इन लिम एम मरंती ए तुला जो अन लिम लो तो कन्वर नो चार चार तक तक अप कन लिम लाई तक ले कन दम वे लाई तक ने नंग मई दम टाइम। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा इश्क विश प्यार व्यार फिल्म का गीत, और गीत की बोल है चोट दिल पे लगी। उसके बाद हम सुनेंगे धड़कन फिल्म के गीत, और गीत की बोल है तुम दिल की धड़कन में। तो आइए सुनते हैं चोट दिल पे लगी।

तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, ये था तुम दिल की धड़कन में, और ये धड़कन फिल्म का गीत है। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं इस खंड के लिए, तो मैं आप सभी लोगों से इस खंड के लिए विदा लूंगी और फिर आप लोगों के पास लौट के आऊंगी आज रात 8:02 पर। तब तक के लिए आप हमारा इंतजार कीजिएगा और सुनते रहिएगा FM जवाहर। और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में डूबा रे डूबा।

नमस्कार आप सभी लोगों को आपके आरजे नुबई की ओर से यहाँ हमारा दूसरा खंड में स्वागतम। और इस खंड में हम सुनने जा रहे हैं हिंदी गायकों का अलग अलग गीत। तो हम शुरुआत करेंगे येसुदास द्वारा जो गाया गया गीत है उससे। और आप सभी लोगों को शायद हमारा साथ पसंद आए होंगे, हमें आपका संदेश भेजिएगा अगर हम आपके संदेशों का यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम सुनेंगे यशुदास द्वारा गाया गया स्तुति, माफ कीजिएगा स्तुति गीत नहीं है, द्वारा गाया गया प्रेमी गीत। और गीत की बोल है दिल के टुकड़े टुकड़े करके। तो आइए सुनते हैं दिल के टुकड़े टुकड़े करके।

जी हाँ, मेरे प्यार श्रोता, ये था यशुदास द्वारा गाया गया गीत। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा अपना पहली सी बात है। तो आइए सुनते हैं अपना पहली सी बात है आप सभी लोगों के लिए।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था अपना पहली सी बात है। बहुत ही खूबसूरत गीत है, मुझे भी बहुत पसंद है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएंगे। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा ओथम्स द्वारा गाया गया गीत, और गीत की बोल है आप लोगों को पता है, गीत की बोल तो हम नहीं बताएंगे, आप सुनेंगे। और जी हाँ, आप लोग भी सोचिएगा, गेस कीजिएगा कि कौन सा गीत मैं आप लोगों को ओथम्स द्वारा गाया गया गीत सुनाने जा रही हूँ। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, ये गीत जो है आप सभी लोगों को पसंद है, तो आइए सुनते हैं ओथम्स द्वारा गाया गया गीत।

तो मेरे प्यारे श्रोता, ये था ऑथम्स द्वारा गाए गए सुकून। तो अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की ओर। ललदीन पुए है अनाजे प्ले ले तुर का नंग माता ले लोगाई थवे जोंग जोंग तान ले कछे अंते दौर पुए मी ते तान अरुंती नी ललदीन पुए फल कौन वेंग लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट गीत जो है, आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया है, जिन जिन लोगों के लिए आप फरमाइश करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के नाम करेंगे। और हमारा अगला गीत जो है वो है, आप सभी लोगों को शायद पसंद आएंगे वो गीत, और वो है गुरनजार के आवाज में, और गीत की बोल है दिल तू जान टूट। आइए सुनते हैं दिल तू जान टूट।

ओ जी हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, ये था दिल तो जान तो गुलनज़ार की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। आजकल ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध है, ट्रेंडिंग कंती अंकमा, तो सब लोग ये गीत को अब अपने स्टेटस पे भी लगा रहे हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और। हमारा अगला गीत होगा जोत आहूजा के आवाज में, और गीत की बोल है खत आप सभी लोगों के नाम।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था नवजोत आहूजा के आवाज में और गीत की बोल है तेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत गीत है, ये खत है और खत के माने लेखन माम। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत जो है वो है बहुत ही खूबसूरत गीत, शायद आप सभी लोगों को भी पसंद आएंगे ये गीत। तो हमारा अगला गीत होगा गजब का है दिन, तो आइए इस गीत का आनंद लेते हैं।

तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, ये था गजब का है दिन। बहुत ही खूबसूरत गीत है और ये गीत जो है ये बहुत ही पुराने फिल्म, ज्यादा पुराने नहीं, आमिर खान के और जूही चावला के फिल्म का गीत है। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं इस खंड के लिए। आप सभी लोगों से विदा लेने का समय फिर से आ गया है, तो मैं फिर आप लोगों के पास लौट के आऊंगी आज रात 10 बजे। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिएगा और सुनते रहिएगा FM सवाई। इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा बागी 2 फिल्म का गीत, ओ साथी।

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी लोगों को आपकी आरजे नुबई की ओर से फिर से स्वागत है। और जी आइए, आज रात का हमारा आखिरी खंड है और इस खंड में मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। सबसे पहले हम सुनेंगे स्टेरियो नेशंस द्वारा गाया गया गीत और गीत की बोल है ब्राउन सुगर। तो आइए सुनते हैं ब्राउन सुगर आप सभी लोगों के लिए।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था ब्राउन सुगर और स्टेरियो नेशंस द्वारा गाया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की ओर। जयललिता महियान आज नुबई, नमस्कार नमस्कार अरुंतिया, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी मेरी ओर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मोई तहन नुबई ता लेगा खतु ते तान रंती बोकनी गन वहन लोम ठीन तक। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा तेरा यार हूँ मैं, सोनू के टिट्टू के स्वीटी फिल्म का। तो आइए सुनते हैं तेरा यार हूँ मैं।

0: रिश्ते नहीं बदलते किसी तीसरे के आने से जी। हाँ, हमारे दोस्ती जो होते हैं वो बहुत ही अटूट होते हैं किसी तीसरे के या चौथे के आने से। हमारी दोस्ती या यारी कभी नहीं बिगड़ सकते। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, यहाँ मुझे के गईते की ओर से संदेश मिला है। वो लिखता है, लौदीती रेंगलो नु बई वरे रे एम ए विले जाने चु अतोप कलाउ खेन पुई दोन चियांग लु तुक चे रुन ती आ तोप लम अतोप फे लेन रुन फूर निची ना का खुआ हर ते रे नेन का तिंगे मनी ले ओ कतिया चुआनिंग ताहियान दुर्गे शहियान गुड इवनिंग आरजे बिग सलाम थैंक यू फॉर प्लेइंग सॉन्ग तेरा यार हूँ मैं रंतिया जी। हाँ, आप पता चला आपको भी तेरा यार हूँ मैं पसंद है। हमें भी बहुत पसंद है, यारों के लिए है ये गीत, तो इसीलिए मुझे ये गीत बहुत पसंद है। तो जी हाँ, आगे बढ़ेंगे हम रात लंबिया। ये है सिद्धार्थ और कियारा के फिल्म का गीत और फिल्म का नाम है शेरशाह। तो आइए सुनते हैं रात लंबिया।
1: सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था रात लंबिया। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये गीत आप पसंद आए होंगे। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा पल पल पल पल।

तो जी हाँ मेरे प्यार साथो, ये था लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत, और गीत की बोल है पल पल पल हर पल। तो जी हाँ मेरे प्यार साथो, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की ओर।

और मुझे यहाँ सी जता ही अनलो ओ पेना का ओ पेना नी लो वांग हां का लो शे लो वम आर जे नु बय लो लंगता मुत अहुन छे मुहाल मक रति हां जानिन अनुवा छियर वे दु लो वे ल लो तिया छियर वे दुए कन लो शे लो लो का ओ पेन लो वा के मा खान मम ति जानिन के ngai te ya ni du ti don pyang mi lo shil ma sa se ro nu boy in duty routine ka shilwa kohar takten ilo om mai mai chile ka thina avarim vele ati tik che thin rim na thamani kan khohar thei lutuk in ron thon lo i chuan mom ab hum aage badhenge hamare agle geet ki aur hamara agla geet hoga bheria film se apna bana le

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था अपना बना ले और ये भेड़िया फिल्म का गीत है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और अगला गीत ही कन सोंग ले चर चरंगम नल देव देव खाइन दो ठीन बॉक्सी ये तेरो अच्छे बांग चाने नल देव देव कम प्लेयंग। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, मुझे यहाँ सी जे तहियाने मुत्तुई पोट्स ले नी ले तुआंग तकिन कंती ले तो मैदोन न्यांग चू रंती ए तेरेंग मै तुआंग तकिन कंती ले मैदोन न्यांग चू के ngai te hian kaleng tar om chuang lo ti vel hindi la chuan usko ke wa la tan lo play la ran de usko ke wa la ke liye hum play karenge hamara agla geet। hamara agla geet hoga kabir singh film ka geet aur geet ki bol hai tujhe kitna chahne lage।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था तुझे कितना चाहने लगे हम। और अब समय आ गया है इस खंड का, हमारा आखिरी गीत सुनने का। और हमारा आखिरी गीत होगा तेरे हवाले, लाल सिंह चड्ढा फिल्म से। और इसी गीत के साथ मैं आपकी आरजे नुभाई आज रात के लिए आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ।